तो भटके हुए रस्ते अंध थे, चलन वाले भटक गए। शारा अज भी असी देखते हां उन्हां ते कोई बहुत भीड़ नहीं है। बकौले भगत कबीर, जह मार्ग पंडत गए पाछे परी बहीर, एक औघट घाटी राम की ते चढ़ रहे हो कबीर। जिस रस्ते ते चतर चलाक मनुख चल पे, बड़ी भीड़ चल पई। तर्क एक बंदा तर्क करने वाला, जैसे रस्ते च औघट घाटी आई पहाड़ आया, उन्हें किनारा कशी की थी और किनारा कशी कर दिया ही भटक गया। और ए पहाड़ जिन्होंने अबूर नहीं करना सी, उन्होंने ये भटकन चंगी लगी, तो उसके पिछे चलन वाले भी भटके। और इस तरह दे भटकन वाले दे करके चलन करके रस्ते बने। ये भटके हुए रस्ते करीबन करीबन सारी दुनिया दे जो है मौजूद ने, जिन्हां दे ते चल के मनुख प्रभु तक ते नहीं पहुंचता, भगवान तक ते नहीं पहुंचता, पर हां रस्तियां दे च भटक के रह जांदा है। और ए साफ दिखाई देता है। इस वास्ते एक आलम नु कहना पया, मंजिल पे चलने वाले मंजिल पे जा लगे, राहें बदलने वालों की राहों में कट गई। जिथे रास्ता कठिन दिखाई देवे, मनुख उथे रास्ता बदलन दी जो है कोशिश करदा है, ते प्रभु दा मार्ग मैदानी रास्ता नहीं है, पहाड़ी रास्ता है। एक औघट घाटी राम की तहीं चढ़ रहे हो कबीर, इसे नु रविदास कहंदे ने, घट औ घट डूंगर घना, एक निर्गुण बैल हमार, रमैये सिंह एक बेनती, मेरी पूंजी राख मौरार। औघट घाट उसनु कहंदे ने जिस दे चढ़ना बहुत कठिन होवे, जिस तो लंघना बहुत कठिन होवे और चढ़ाइया ते दम फुल जाए। इस तरह का ही परिपूर्ण परमात्मा का मार्ग है, क्योंकि सुरत नु बुलंदिया ते लै जाना है, उचाइया ते लै जाना है। इन्हां उचाइयां तो जो भी घबरांदे ने रस्ता बदल देने, और पहली दफा जो रस्ता बदलदा है वह भटके वाला इंसान ओदे कदमां दे निशान पक्के रस्ते बना देंदे ने। और उस एक दे भटकन करके बड़ी दुनिया भटकदी है। और इस तरह की भटकन करीबन करीबन सारे जगत दे जो है मौजूद है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, यही मेरी घोड़े की असवारी है, यही सोने की काठी है, हे प्रभु जिड़ा मैं तेरे रस्ते नु जान लिया, तेरे मार्ग नु जान लिया। घोड़े पाखर सोयने साखत बूझण तेरी वाट, मैं जान लिया तेरा रस्ता की है। उसका रस्ता की है, जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, तेरा नाम जपना ही तेरे राह ते चलना है, तेरे मार्ग ते चलना है, बाकी सब भटकना है। नाम बिना जेता व्यवहार जो मृतक मिथ्या सिंगार, नानक के घर केवल नाम। सतगुरु देव जी महाराज कहंदे ने, साडे घर दे ते केवल नाम दा ही जप है, और कुछ भी नहीं। और यही एक मार्ग है, यही एक सही मार्ग है, बाकी सारी दी सारी जो है भटकना है। उदे रस्ते नु बुझना की है, उदे नाम नु जपना, और नाम जपन दे च पूरा भरोसा होना कि परमात्मा तक पहुंचने का यही मार्ग है, यही रस्ता है। तो साहिब कहंदे जिहड़ा तेरे रस्ते नु जान लिया, तेरे वाट नु समझ लिया, बस यही साडे वास्ते घोड़ियां दी असवारी है। घोड़े पाखर सोयने साखत बूझण तेरी वाट, तरकस तीर कमान सांग तेग मन गुण धात। हे परिपूर्ण परमात्मा, तेरे अनंत गुणा नु जो धारण कर लिया है, यही साडे कोल भत्था है, उस दे च तीर ने, यही साडे कोल कमान है, और यही तेग बंद जिस दे च तलवार रखी दी है, उन्हूं कहिंदे ने तेग बंद गात्रा। यही साडे कोल ओ गात्रा है, और यही साडे कोल तलवार है, केड़ा जो तेरे गुण साडे कोल ने। ये जो ज्ञान आ गया है, ये जो शील आ गया है, ये जो संयम आ गया है, ये जो प्रेम आ गया है, ये जो समदृष्टि आ गई है, ये जो हृदय निर्वैर हो गया है, निर्भय हो गया है, यही ते साडे शस्त्र ने। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज भी इसका बड़े सुंदर ढंग नाल जिक्र करते ने। आम कहा जाता है अवतारी पुरुषों को कुछ ना कुछ शस्त्र रहे ने। मुहम्मद साहब दे हथ दे तलवार सी। अपने देश नु देखिए, श्री राम दे कोल धनुषबाण सी, द्वापर युग दे अवतारी पुरुष श्री कृष्ण जी कोल सुदर्शन चक्र सी। किसी तार्किक ने गुरु अर्जन देव जी महाराज

다른 걸 원칭지 말아이다. 혹은 레헷 베아리 모지코 시크 베아라나 दरअसल सिख का स्वरूप ही ता बनता है जे उस को रहनी हो गए। रहनी दो तरह की, मानसिक ते शरीरक। मानसिक रहनी है बाणी दा पाठ, जपजी साहब, जाप साहब, सवैये चौपाई, आनंद साहब और जितनी बाणी पढ़ सके। मूल मंत्र दा जप एक ओंकार तो लेके गुरप्रसाद तक वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु मंत्र दा जप दो वक्त, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा या जितना उसको समय। ये मानसिक रहत है। तन दुते पंच ककार ये शरीरक रहत है। मन करके सिख बने, तन करके ये सिख बने तो मानसिक ते शरीरक रहत चाहिए। ना मानसिक रहत होवे ना शरीरक, तो धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहंदे ने ए सिख मैनू प्यारा ने, क्योंकि इसने पाहुल नहीं ली और रहनी नहीं रखी। धरे केस पाहुल बिना देखी मूरख सिख, तिसको दर्शन ना है मेरा पापी त्यागे दिख। रहत नाम इस तरह के बोलने ज्यों का हूं।

अनंत परम पद की प्राप्ति नहीं कर सके, वह समाज नाल संघर्ष करते हैं, कानून नाल संघर्ष करते हैं, जगत नाल संघर्ष करते हैं। और इस संघर्ष दे जगत नू चोट पहुंचती है, जगत नू हानि पहुंचती है, लेकिन संघर्षमयी बिरतियां ते मनुख दे अंदर हैं। जो अपने मन नाल संघर्ष करन नू राजी हो जाए साधु, और जो समाज दे नाल संघर्ष करन नू अपने आप नू समझा लवे मना लवे दुष्ट है। इंज कह लो पृथ्वी ते या ते साधु ने या दुष्ट ने, क्योंकि संघर्षमयी बिरतियां ते मनुख दे अंदर है कियां ने। तो जो समाज नाल संघर्ष करदा है समाज दे नियम तोड़दा है, कानून नू तोड़दा है, मर्यादावां तोड़दा है, और तोड़ के अपना मतलब हल करदा है। दूसरे पासे जो साधु है साधना विच लीन है, मन नाल संघर्ष करदा है, तो मन नाल संघर्ष की है? लोभ नाल संघर्ष, काम नाल संघर्ष, हंकार नाल संघर्ष। और ये देखण विच आया ये संघर्ष मनुख कल्या ही करता है, इस विच दूजा तीजा चौथा पंजवां सहायक नहीं आउंदा, बल्कि बाधक ही बनता है। तनहाई चाहिए, एकांत चाहिए, रहे एकांत एको मन वसया आसा माए निरासो। जो समाज नाल संघर्ष करता है इनू दूजे तीजे की लोड़ आउंदी है, जो कानून नाल संघर्ष करता है संसार नाल संघर्ष करता है ये अपना संगठन बना लेंदा है, अपनी जमात बना लेंदा है, ग्रोह बना लेंदा है। पर एक गल सच्चाई है, दुष्टां दे ग्रोह होए ने, संतां दे संगठन नहीं होए, अवतारां दे संगठन नहीं होए, परम पुरखां दे संगठन नहीं होए। कल्ली जिंदगी, तनहा जिंदगी। इस वास्ते मैं अक्सर कहिंदा हुंदा कोई देश पूर्ण तौर ते राजनीतिक हो सकदा है, पर कोई देश पूर्ण तौर ते धार्मिक नहीं हो सकता। कोई देश पूर्ण तौर ते धनवान हो सकता है, पर कोई देश मुकम्मल तौर ते धार्मिक नहीं हो सकता। और कोई देश मुकम्मल तौर ते सामाजिक हो सकता है, कोई देश पूर्ण तौर ते व्यापक तौर ते धार्मिक नहीं हो सकता। देश दी ते गल छड्डो, कोई पूरे दा पूरा प्रांत भी धार्मिक नहीं हो सकता, कोई पूरी दी पूरी कौम भी धार्मिक नहीं हो सकती। ते कौम दी गल बहुत वड्डी है, कोई पूरे दा पूरा परिवार भी धार्मिक नहीं आउंदा। ऐसा देखण विच आया है, बड़े बड़े अवतारी पुरुषां दे घर विच परिवार विच भी बहुत वड्डे अधार्मिक पुरुष पैदा होए। कंस अधार्मिक है, पर वक्त दे अवतारी पुरुष द्वापर युग दे अवतारी पुरुष श्री कृष्ण दे ओ मामा ने। लेकिन समय दा अधार्मिक पुरुष प्रहलाद दे पिता ने हरनाकश, अधार्मिक पुरुष धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दे वड्डे भराता ने बाबा पृथ्वी चंद गुरमत तो बिल्कुल उल्ट, गुरु अर्जन देव जी दे विरोधी, सच दे विरोधी, कोमल हुनरां दे विरोधी, धर्म दे विरोधी। पूरे दा पूरा परिवार भी धार्मिक होवे इतिहास दे ऐसा देखण नूं नहीं मिलदा। मीरा धार्मिक है, उसका पति नहीं है, सुकरात धार्मिक है, उसकी पत्नी नहीं है। पर हां, पति धनवान है, पत्नी धनवान है, पिता धनवान है, पुत्र धनवान है, सारा परिवार धनवान हो सकता है, सारी कौम धनवान हो सकती है। जैसे कहिंदे ने रूहे जमीन दे जिथे जिथे यहूदी वस रहे ने धनवान ने, चोटी दे धनवान ने। तो कोई उम्मत पूरी दी पूरी धनवान हो सकती है, गुणवान हो सकती है। कोई देश पूरे दा पूरा संपन्न हो सकता है, शक्तिशाली हो सकता है, धनवान हो सकता है। रूहे जमीन ते अज तक एक घाट बनी हुई है, कोई पूरे दा पूरा देश धार्मिक नहीं होया, कोई पूरे दा पूरा परिवार धार्मिक नहीं होया। धर्म व्यक्तिगत है, निजी है। प्यो नूं धन मिल जांदा है तो समझ लो पुत्र नूं मिल गया है, पर पिता समाधि लीन हो गया है लाजमी नहीं पुत्र समाधि लीन होवेगा। पुत्र समाधि लीन हो गया है तो हुण लाजमी नहीं कि परम आनंद पिता दी झोली विच वी जो है।

बर्दाश्त ना होवे। इस सुच्चा नंद गीता दा पाठ भी करता है, सुच्चा नंद गंगा जल दे नाल इशनान भी करता है, इन्हें तेरे धागे दा गले जनेऊ भी पाया। ये चलदा चलदा ठंडे बुरज दे अंदर आया, पर ये राज नीति दे तहत आया। इन्हें आन के हाथ जोड़े बनावटी तौर ते नमस्कार कीती, मत्था चुकाया ते आख्या माता जी मैं हिंदू हां, मैं इथे वजीर खान दे दरबार दे अंदर एक उगा अहलकार हां, मेरा नाम सुच्चा नंद है। माता जी क्यों ना आपा इन्हां दी गल नूं प्रवान करके दीन कबूल कर लईए, आपा इन्हां दे अंदर वड़ के ते इन्हां कोलों राज लै लवांगे, इन्हां दे अंदर वड़ के राजनीति तो कम लईए, सामने लड़ना इस वक्त अपने विच हिम्मत नहीं, पर गुरीले तरीके दे नाल जंग करिए, इन्हां दे अंदर वड़ के इन्हां दीआं बेगमां दे नाल व्याह करा के इन्हां तों सहजे सहजे आपां राज लै लवांगे। माता गुजरी जी अंतरयामता दे मालक सन, ब्रह्म ज्ञानता दे मालक सन, माता गुजरी जी इहदी पद नीयत नूं जाणदे सन। आखिया सुचिया जिस गल कारण तू आया वह गल तेरी सिरे चढ़ने नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि जे ये काम करना हुंदा ते असी आनंदपुर साहब दा किला खाली करके क्यों आंदे, साडा इन्ना खालसा गिनती दे अंदर शहीद होया वह शहीद क्यों आंदे, बहुत सारा परिवार खिंड पुंड गया, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह विछड़ गए, असी वखरे हो गए, बड़े बेटे वखरे हो गए, ते अज तू सानू सलाह देने वास्ते आए, ए तेरी सलाह उदो किथे सी जदों गुरु अर्जन देव पातशाह शहीद होए, जदों गुरु तेग बहादुर पातशाह शहीद होए, ते उदो तू इन्हां दे नाल रल के राज लैण दी गल क्यों ना कीती, तू अज सलाह देने वास्ते आए। खैर सुच्चा नंद 11 पौ नू वापस चला जांदा है, 12 पौ वाला सूरज चढ़दा है। एक मैं होर बेनती करदा चला, मोती मेहरा लगातार दुध पिउण दी सेवा करदा रहा है, ते जिस दरोगे नू रिश्वत दित्ती सी ना गहणिआं दी, ओह दरोगा भी अपने बुल बंद ही रखदा है, जुबान खोलदा नहीं, ते मोती मेहरे नू आउण जाण दे अंदर कोई रुकावट नहीं सी, क्योंकि अहलकार सी, उथों दा लांगरी सी, कोई शक ते इहदे ते करदा नहीं सी। इह ते खबर बाद विच मिलदी है जद मोती दा पाज खुलदा है, ते मोती मेरे नू फिर सजा मिलदी है। खैर सुच्चा नंद वापस चला गया, 12 पो दा सूरज चढ़दा है, ते 12 पो नू दूसरी पेशी होनी है, उस दूसरी पेशी नू गौर पूर्वक सुनन ते समझन दी कृपालता जरूर करियो। 17 प्रतिष्ठित हस्तियां बह जांदियां ने वजीर खान दे चार छुपेरे, उन्हां दी गिनती है 17, उन्हां दे अंदर वजीर खां आप है, उन्हां दे अंदर एक काजी है, एक उन्हां दे अंदर सुच्चा नंद है, एक मुहम्मद शेर खान नवाब मलेर कोटलिया है, ते बाकी होर उगे पंच सरपंच अमीर वजीर वजीर खान दे चार छुफेरे बह जांदे ने, गिनती इन्हां दी 17। विचार विमर्श होए, आपस दे अंदर गल्लां बातां शुरू होईयां, इन्हां छोटे साहिबजादियां दे हक विच गल जा रही है जां विरोध विच जा रही है, इस तरह गल्लां बातां आरंभ होईयां। सारे एक पासे ने ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਤਵਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਦੀ ਤੁੰਮੇ ਤਰਬੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਵਾਰ ਪਿਉਂਦਾ ਲਾਈਏ। ਇਹਨੇ ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਖਾਰੇ ਖੂਹ ਕਦੀ ਮਿੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਭਾਵੇਂ 100-100 ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਪਾਈਏ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਤੀਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇਸ ਪੋਲੀਏ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸੰਭਾਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਜੰਮਦੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਸੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕੁਚਲ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਬੋਲਿਆ, ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੀਰ ਖੋਰ ਨੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਨਾਰ ਖਾਂ ਹੈ, ਨਾਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਮਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ

जिन्नी देर तक गुरु अर्जन देव ने अपने बढ़ा नहीं लिया, सूरज चढ़ते तो लैके लेंदे तक सारी धरती नू घोख ली, गुरु अर्जन वर्गा कोई पातशाह नहीं हो, गुरु अर्जन देव दे दर नू छड़ के जाई ना। क्या सी उगवनो तै आत्मनो चौ चक्की कीन लोवा, जिनी गुरु ना सोवेओ मन मुखा पया मोवा, दुनी चौनी करा मात सच्चे का सच्चा ढोवा। सच्चे वाहगुरु दा तो भई गुरु अर्जन देव तेनू जदो भट्टा नू पुछया के गुरु अर्जन देव नू किवें याद करिए, ओना ने ता अंदर दी पीड़ा प्रकट कर दिती। कह लगे जब लो नी भाग ललार उदय, तब लो परबते फिरते बहुत आयो, कल घोर समुद्र में बूढ़त थे, कब हूँ मिट है नहीं रे पछतायो, तत विचार यह मथुरा। कह लगे मैं तत की गल कहना पियावा, तत विचार यह मथुरा, जगतारन को अवतार बनायो, जपियो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। भट्ट ने अगला बचन किया, कह लगे जग और न यह महातम में, अवतार उजागर आन कियो, तिनके दू कोटक दूर गए, मथुरा जिन अमृत नाम पियो। कह लगे आज जे गुरु अर्जन देव दा शहीदी दे मनान लगे ना, ए पदत ते मत चूकै रे मन, ए दे अर्थ ने इस सिद्धांत तो किते थिड़क ना जाई, केड़े तो। कह लगे ए पदत ते मत चूकै रे मन, भेद विभेद ना जान पियो, किते गुरु अर्जन देव ते रब विच अंतर ना समझ लई, ए पद ते मत चूकै रे मन, भेद विभेद ना जान पियो, पर तच हृदय गुरु अर्जन के हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो। आओ प्यारियो, उस गुरु अर्जन देव ने अपने आप नू कुर्बान करके सिखी विच एक नवी रूह फूक दिती, प्यारियो नवा रंग लियांदा। गुरु अर्जन देव कृपा करन सानू भी अपने चरण शरण अपने चरणा विच टिका बख्शन, नाम दी दात बख्श के दाता निवाज दे। इनिया को बेनतियां जी प्रवान करनिया जी। वाहिगुरु जी का खालसा।

साहिब जियो जब लो नहीं पाग लेलार उदय तब लो परम ते फिरते बहुत आयो कल कोर समुंदर में बूढ़त थे कब हूँ मित है नहीं रे पछतायो तत विचार यह मथुरा जग तारण को अवतार बनायो जपे हो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना आयो जपे हो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना आयो परम सम्मान योग जुगो जुग अटल चवर शतर तख दे मालिक साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान खोए बैठे गुरु सवारे सत संगी जनो आप जी आज हफ्ता वरी जो

विशेष दीवान सजदे ने उस दीवान दी हाजरी भर रहे हो। अमृत गुरबाणी दा कीर्तन और गुरमत विचारा आप जी ने सरवण कीतिया ने। आओ अज आपां धन गुरु अर्जुन देव सचे पातशाह जी उन्हां दा पावन पवित्र शहादत वाला दिहाड़ा मना रहे हां। भावे हर साल इस दिहाड़े नूं सिख जगत भावना श्रद्धा दे नाल मनांदा है, पर सतगुरु नित नवा है। गुरु की साखी सिख दी जिंदगी नूं नित नवी सेध दिंदी है। आओ जितनी कुसूझ धन गुरु ग्रंथ साहिब जी कृपा करनगे शब्द दी गुरमत दी रोशनी विच हजूर दे अमृत बचन और उन्हां दे पवित्र जीवन दी सांझ आप जी नाल पा सका। करो कृपा साध संगत अपने ख्यालां नूं संकोच के साहिब धन गुरु अर्जुन देव महाराज जी दे चरणां विच बेनती करिए कि आप बख्शिश कृपालता करके विच वरतो, साडे अंदर नूं टिका बख्श के अपने अमृत बचन पवित्र इतिहास दी विचार आप ही करा लवो। गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह जी महाराज जिन्हां नूं वख वख नावां नाल भी विद्वानां ने संबोधन कीता, धन गुरु अर्जुन देव कृपालू जी उन्हां दी आमद धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दे घर अंदर जिन्हां नूं असीं प्यार नाल शब्द वरतने आ बीबी भानी जी माता भानी जी दी कुख तों साहिब धन गुरु अर्जुन देव महाराज जी दी आमद हुई है। ते पता नहीं जो गुरु अर्जुन देव जी दी सिफत विच सवैये उचारण कीते ने, ते सब तो पहले सवैये विच उन्हां गुरु अर्जुन देव जी दे आउण ते उन्हां दे जीवन संबंधी ते गुरु रामदास जी दे घर अंदर किन्नी कु प्रसन्नता है उस नूं पहले सवैये दे अंदर ही उन्हां बयान कीता। पटां दे बचन असीं पढ़ने आ कि सिमरन सोई पुरख अचल अविनाशी, जे सिमरत दुरमत मल नाशी, सतगुर चरण कवल रिद तारंग, गुर अर्जुन गुण सहज विचार। साहिब धन गुरु अर्जुन देव जी दे गुणा दी गल करदे आ, सतगुरु तां है गुणा, गुणा दा खजाना गुणी निदान है। ताई भाई गुरदास जी होना ने जदों गुरु दी उपमा कीती ते उन्हां ने अपनी वार दी एक पौड़ी विच जिक्र कीता कि सतगुर गुणी निदान है, गुण कर बख्शे अवगण आए। इत्थों तक कि किन्ने गुणा दे खजाने ने, किन्ने इन्ने गुणी निदान ने कि जे अवगणा नाल भरिया होया भी कोई शख्स गुरु की अधूरी भी चला जाए ते ओदे अवगणा नूं मिटे के ओदे अवगणा नूं खत्म करके ओदे अंदर भी गुण प्रगट कर देंदे। भाई साहिब भाई गुरदास जी दे बचन असीं पढ़ने आ, उन्हां ने शब्द वरते ने सौदा इकत हट है, शाह सतगुर पूरा, सतगुर गुणी निदान है, सौदा इकत हट है, शाह सतगुर पूरा, औगण लै गुण बिकने बचने दा सूरा, सतगुरु बचन दे सुरे सूरे ने, बचन के बली ने, ते नाल उन्हां ने शब्द कहे ने, औगणा नूं लै लैंदे ने, ते जग्यासु दे सिर दे अंदर गुणा दा प्रगाश कर देंदे। धन गुरु अर्जुन देव जी दे संबंधी पट्टा ने सब तो पहला ए बचन सिर्फ तो

जागीरदार मेरे सच्चे पातशाह उतरे, एक एक सिख नू देख के कहन लगे ए मेरा 20,000, ए मेरा 30,000, किसे नू क्या मेरा मुल्तान दा नवाब, मेरा कश्मीर दा हाकम, मेरा दिल्ली दा सम्राट। कहिंदिया कहिंदिया प्यारियो अज चोजी प्रीतम दे नेत्र छलके सन, क्योंकि जदों कोई परत के घर हुंदा है ना रुसिया होया घर आवे ते सच जाणियो फिर गिले नहीं, रुसे हुए घर आउण ते अखां ही छलकदियां। हजूर तुरे जांदे ने, अज बैठा है भाई मां सिंह जमीन ते डिगा, चेहरा खून नाल लत पत कह सवास चलदे ने, ते एक अंदरे अंदर बेनती करदा चोजी प्रीत मां, सवास पूरे खून तो पहला एक वार अपनी गोद दा प्यार दे दे, एक वारी तुसी सानू विखाओ, मैं तुहाडे चरणा विच हाथ जोड़ा, मैं अपने खून नाल तेरे चरण धो के माफी मंगांगा, तू सानू बख्श दे। भाई वीर सिंह लिखदे ने, मौत ते गुरु दोनां दी इंतजार है, मौत पहला आउंदी है कि गुरु पहला आउंदा है। एक गल बाणी पढ़न वाले चेते रखियो, सिखां दे परन बड़े अजीबो गरीब जे, असी आम तौर ते शब्द वरतने आ कि एदू चंगा इस बेदबी नालों चंगा तां मर जाना चाहीदा है, पर इत्थे 72 साल दा 75 साल दे करीब बाबा दीप सिंह कहिंदे ने मैं नहीं उन्नी देर तक मरना गुरु रामदास जिन्नी देर तक तेरे दरवाजे विच मैं शीश ना पेटा कर दे। कि ओ जी परन खै इत्थे खोपड़ी उतरी खै ते सिख दी खोपड़ी उतरी खून नाल भिजा खै, ते अगो नवाब नूं कहिंदा है जकरिया खां मैं उन्नी देर तक इथों नहीं जाना शरीर विचों जिन्नी देर तक मैं अपनी जुत्ती अगे ला के तेनू नहीं लिजांदा। 22 दिन खोपड़ी तो बिना जिंदा रहा गुरु का लाल, 22 दिन असी केवल एक शब्द कह के कह देने जिन्हां खोपड़ियां उतरवाइयां, 22 दिन खोपड़ी तो बिना, 21 दिन जकरिए दी मौत होई, ते 22 दिन भाई तारू सिंह ने कहा इशनान कराओ मैं गुरु गोबिंद सिंह दी गोद विच चला। सिख दा परन बड़ा अजीब है, एक पासे मौत दूजे पासे कलगी वाला चोजी प्रीतम, हे दाता मौत तो पहला तू पहुंच जा। अज मेरे हजूर जा कोल पहुंचे, देखिया चेहरा सारा खून नाल भिजा सी, देड़ा दाड़ा खून नाल भिज के जमीन दी मिट्टी रेता सारी खून नाल जमी पई है। हजूर ने देखिया नबज चलदी पई है, कृपालू दातार जी ने अपनी गोद बनाई। प्यारे शीस भाई महा सिंह जी दा अपनी गोद विच टिका लिया, नेत्र छलके अपने परने नाल अपने गल विच पाए हुए बस्तर नाल भाई साहब दे चेहरे नूं चंगी तरह पूंझिया, उन्हां दे दाड़े नूं साफ कीता, पहचान के कहन लगे मेरा महा सिंह प्यारो कागज विच लिखिया तू साडा गुरु नहीं असी तेरे सिख नहीं, पर गुरु दा अंदर कह रहा मेरा महा सिंह। ते कोल खलोते ने एक बचन किया, ए वैसे किसी किताब विच लिखत नहीं, एक कमाई वाले सज्जन ने बचन कहे सन, कोई जरूरी नहीं जो लिखत विच है उन्हूं मनिए मनना चाहिदा है, पर जिहड़ा सुरत विच दाता घटा दिंदा वह लिखता विच नहीं जे हुंदा। वह करनी वाले कह रहे सन कि जदों भाई मां सिंह जी नूं गोद विच लिया ते एक एक सिख नूं पहचान के जदों असीसां दित्तियां, किसे ने शब्द किया सच्चे पातशाह ए ओह ने जिहड़े लिख के दे गए सन कि तू साडा गुरु नहीं असी तेरे सिख नहीं, गोदी विच पिया होया मां सिंह अजे सुरत नहीं। हजूर ने उच्ची आवाज विच कहा प्यारियो एक पास्यों टुटी सी दूजे पास्यों नहीं, ए शब्द नूं समझियो, कहन लगे ए ओ ने जेड़े लिख के दे गए तोड़ के चले गए टुटी वाले ने। साहब कहन लगे एक पास्यों टुटी सी दूजे पास्यों नहीं, कहन लगे ए दे अर्थ की एक पास्यों टुटी दूजे पास्यों नहीं, कहन लगे कागज उत्ते इना लिख के दिता तू साडा गुरु नहीं असी तेरे सिख नहीं, मैं तो नहीं लिख के दिता तुसी मेरे सिख नहीं ते मैं तुहाडा गुरु। एक पास्यों टुटी है दो पास्यों नहीं, जे दवली टुट जाए ते किते थां नहीं, दसो कागज विच इन्हां ते लिखत है मेरी लिखता विच है ही नहीं, ए मेरे ने मैं इन्हां दा वां। इन्नी देर नूं भाई महा सिंह जी दे नेत्र खुले बोल फरके देखिया मेरा चोजी प्रीतम कलगी वाला हाथ जुड़ गए, कंबदे हाथ ने मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे नेत्रां विचों निकलिया नीर, भाई मां सिंह जी दे चेहरे उत्ते दो तुपके पै। हुण इहनू पत्थर समझ के ना पामनीए प्यारियो, जदों भाई मां सिंह ने देखिया हजूर नूं कंबदे होए खत ने, हजूर कुट के सीने ना ला के मुख बुल्लां विचों आवाज नहीं निकलदी,
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ

इस अहंकारी बाप ने यह कह दिता कि मैं तेनू एक कोड़ी दे लड़ लावांगा जिस दे हाथ पैर उंगलियां भी झड़दियां पईआं ने, तू ऐसे जींदे जी नरक भोगेंगी क्योंकि मेरे हाथ विच बहुत कुछ है। ते उस बच्ची ने अपने पिता की आग्ञा नूं सत करके अपने